0: 1-800-300-7408
1: ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੰਗਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ 4036074208 ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ
2: साल हो गया गाना सुन दिन बस कैलगरी च कार लेन दिया फीलिंग आई ले जायो वीरे दी फैमिली ने भी टोरंटो तो कैलगरी मूव होण दा मन बना लिया है ओना दे आउण तो पहला मेनू कार चाहिदा है
3: मेरी कल ही गल होई है रियल्टर जग्गी ते लोहरा नाल जिन्ना दी सलाह नाल हुन कार एक नहीं दो लवांगे पहला अपने लई ते दूजा तेरे वीरे लई मैं सुनया जग्गी ते लो पूरे प्रोफेशनल तरीके नाल समझांदे है
2: जी हां मैक्सवेल सेंट्रल रियल्टी नाल काम कर दे जग्गी टिल्लो नाल एक बार जरूर गलबात करो जग्गी टिल्लो दा फोन नंबर है 403-616-2445 403-616-2445
4: ओहो आज फेर नहीं लोड मिलया
5: की होया
4: बस पूछना इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन
5: ओहो रह गए ना फेर पीछे मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गाल करके कोई हल लब्बो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001 सोनिक इंश्योरेंस
6: हेलो गोपी शुक्रिया तू फोन चुक लिया जिद्दण दा नवा घर लिया सज्जन मित्र फोन चुकणो भी गए
7: ओ सारे डरदे नहीं चकदे ओना नु लगदा तू मूविंग ली कहूंगा कौन इन्ने भरे सामान नु हाथ पावे
6: ओ नहीं भरावा मैं इंज नहीं करदा आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालेयां नु एक फोन करीदा ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा सामान सही सलामत बिना किसी झंझट दे मूव कर जांदे आ
8: अपने घर जां ऑफिस दा सामान मूव कराउणा होवे तां स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नु अज ही कॉल करो 4038701790 403-870-1790 स्टार मूविंग

Friday, July 3rd, 2026. साल का 184वां दिन, 185 दिन इस साल के बाकी हैं. Partly cloudy, mainly sunny. It is 21 degrees in and around Calgary. Happy Stampede. Welcome to another brand new show of Sangeet Studio. 94.7 FM हर फ्राइडे को मेरा और आपका साथ रहता है. अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड फ्राइडे इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू संगीत स्टूडियो. रूमी ने कहा था कि साइलेंस इज एन ओशन. रूमी ने कहा था कि अगर इंसानों को

0: छे दिन खुले हैं ते ओ भी देर शाम तक ता देर किस गल दी आज ही डायल करो 5876174696 587-617-4696 ओइसे स्माइल मेडिकल तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी 5876174696
1: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने ता फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते पासपोर्ट तो लेके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए एक फोटो एक वार
2: ट्रक चाड़न लई थब्बा नोटां दा लगदा है होर ता होर ट्रकां दी इंश्योरेंस बंदे दा धुआं कढ दिंदी है ते दुहाइयां फिर बंदा पौंदा है
1: सुनो सुनो सुनो ट्रकिंग कंपनियां दे मालक ते ट्रक ओनर जरा ध्यान नाल सुनो ट्रकां दी सस्ती इंश्योरेंस दा हल हुण आ गया ट्रकां वास्ते इंश्योरेंस दे रेट लैण लई सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा नाल 587-832-1208 ते संपर्क करो तजुर्बेकार इंश्योरेंस ब्रोकर मानस पहुजा ते उन्हां दी टीम प्रोफेशनल सेवावां दिंदे हन बेस्ट ट्रक इंश्योरेंस रेट्स लई याद रखो सोनिक इंश्योरेंस 587-832-1208
2: बड़े सोचां च पए हो वीर जी की गल होगी
1: थक गए हां घर लब लब के कैलगरी च घर खरीदना ता हुण बड़ा ही औखा
2: तुसी घर चंद्रमा ते लबदे होणे कैलगरी च नहीं आ नोट करो नंबर अरुण कौशल दा
1: कर लिया जी नोट फोन नंबर 403-618-2112
2: रियल एस्टेट दे सब मसलियां दा हल करनगे प्रेप रियलिटी दे मशहूर रियलटर अरुण कौशल
1: अच्छा जी अरुण कौशल लब के देणगे सानू घर
2: जी हां कल्ले घर नहीं प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल होवे जां कमर्शियल घर खरीदना होवे जां बेचना प्रेप रियलिटी दी वड्डी टीम तो ਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 403-618-2112 ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ
3: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਕੈਲਗਰੀ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਹਿੱਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਤੇ ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਹਿੱਲਸ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਭ ਦਾ ਮਾਣ ਸਭ ਦੀ ਚਾਹਤ ਆਪਣੀ ਸੁਪਨਮਈ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 403-903-6757
2: ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਹਿਲਸ
4: ਸੰਗੀਤ ਸਟੂਡੀਓ

even more. Welcome back, 94.7 FM पर आप सुन रहे हैं संगीत स्टूडियो. 5:19 हुए हैं. आपकी तारीफ का, तनकीद का बहुत बहुत शुक्रिया. दो गानों की, बहुत पुराने से गानों की रिक्वेस्ट है ये. दोनों गाने मेरे पास हैं और दोनों आज के प्रोग्राम में शामिल रहेंगे, इसलिए मेरे साथ रहेगा. ऑयल पे बात करनी है. अच्छा, ऑयल पे क्या बात करनी है. अल्बर्टा के साथ ऑयल जाना बढ़ा जाता है. अब अल्बर्टा की और ऑटावा की एक कोल्ड वॉर चलती रहती है. अल्बर्टा में अगर आपने इलेक्शन जीतने हैं, खासतौर पर कंजर्वेटिव पार्टी में, तो ऑटावा को आपको टेक ऑन करना होगा फॉर राइट रीजंस और फॉर रॉन्ग रीजंस. अच्छा, अल्बर्टा के पास ऑयल एंड गैस है, बहुत बड़ा रिसोर्स है इस सूबे का भी, इस कंट्री का भी. और उसको लेके जो पिछली गवर्नमेंट थी प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की 10-11 साल तक, उसमें ये जो डिस्टेंस था ये बहुत ज्यादा बड़ा. लेकिन फैक्चुअली उससे पहले जो 9-10 साल की गवर्नमेंट थी प्राइम मिनिस्टर हार्पर की, उसमें भी कोई बहुत, क्या कहते हैं हम अपनी देसी जबान में, कोई बहुत तीर नहीं मारा किसी ने. सो पॉलिटिक्स में कभी कभी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए बहुत सारे नैरेटिव बिल्ड कर रहे होते हैं. ये तो हुई माजी की बात. अब प्राइम मिनिस्टर कार्नी हैं तो लिबरल के, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने बहुत सारी जो कहना चाहिए अनट्रेडिशनल चीजें हैं ना, वो करने की कोशिश की है. एंड अल्बर्टन्स आर हैप्पी. नए पोल्स आए हैं, उसमें पियर पॉलिवर जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं और प्राइम मिनिस्टर कार्नी जो लिबरल के लीडर हैं, अल्बर्टा सूबे में, दिस वेरी प्रोविंस जिसमें हम रहते हैं, जिसमें लिबरल की 1, 2 या मैक्स 3 सीटें होती हैं, कभी कभी एक सीट भी नहीं होती, उस सूबे में प्राइम मिनिस्टर कार्नी एज ए लीडर, नॉट लिबरल पार्टी, एज ए लीडर पियर पॉलिवर जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं, उनसे आगे हैं लीडरशिप में. ये पहली बार रिसेंट हिस्ट्री में हुआ है, लास्ट 20-25 सालों में, कि कोई लिबरल प्राइम मिनिस्टर एज ए लीडर कंजर्वेटिव लीडर से आगे हो पोल्स के अंदर. अब जो पियर पॉलिवर हैं उनके अपने इश्यूज है, जाहिर है वो अपनी सीट हार गए, इलेक्शन हार गए, उसके बाद जितने बाय इलेक्शन हुए वो हार गए और बहुत सारे उनके मसाइल हैं, लेकिन वो लीडर हैं और लोग आज भी उनको पसंद करते हैं. पर अगर आप लिबरल्स जो थिंक टैंक्स हैं उनको फॉलो करें, उनसे बात करें, तो वो खुश हैं कि पियर पॉलिवर लीडर हैं. वो चाहते हैं कि एक और इलेक्शन हो और पियर पॉलिवर ही लीडर रहे, क्योंकि जब कोई नया लीडर आता है, एक हनीमून पीरियड होता है, उसका एक अपना क्रिज्मा होता है, उसकी एक अपनी क्लास होती है, तो डर ये होता है कि अगर कोई तगड़ा लीडर आ गया जो कनेक्ट कर गया लोगों के साथ, तो जाहिर है लिबरल गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी. लेकिन लिबरल्स अंदर से चाहते हैं कि वो रहें, और इसी तरह से जो कंजर्वेटिव डाईहार्ड हैं वो कहते हैं कि पियर पॉलिवर लीडर रहें. अब ये तो थी एक सियासत की बात. अब कुछ तो रीजन होगी कि प्राइम मिनिस्टर कार्नी अल्बर्टा में इतने पॉपुलर हैं. उसमें से एक रीजन है जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं अल्बर्टा के, एनर्जी से रिलेटेड जो चीजें हैं, उसमें जो एनवायरमेंट की रिस्ट्रिक्शंस थी, उसमें जो डेवलप करने की रिस्ट्रिक्शंस थी, उसमें जो जिसे कहते हैं कि इस ब्रांड को प्रमोट करने की रिस्ट्रिक्शंस थी, उस पर उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया. स्टैम्पीड के टाइम पे सारे बड़े लीडर अल्बर्टा में आते हैं, और इस वक्त दोनों लीडर यहां पर थे, और यहां पर उन्होंने प्रीमियर स्मिथ से मुलाकात की है. और क्या किया है उसमें, उसमें यह हुआ कि अल्बर्टा से वेस्ट कोस्ट ऑयल पाइपलाइन अनाउंस की गई है प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने, एक बार फिर विद प्रीमियर डैनियल स्मिथ. अब होगा क्या, ये पाइपलाइन कब बनी जाएगी? ये जो पाइपलाइन है सदर्न कोस्ट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया तक जाएगी, वहां से ऑयल एशियन मार्केट्स, खास तौर पर चाइना, इंडिया, इन दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाएगा, ताकि जो ऑयल की डिपेंडेंसी सेल करने की हमारी यूएस पे है और वो औने पौने दामों हमसे खरीदता है, उससे जान छुड़ाई जा सके. एक, दूसरा ये टैरिफ लगाते हैं, तीसरा ब्लैकमेल करते हैं, चौथा कनाडा को डिवर्सिफाई करने की जरूरत है, एंड दैट इज अनदर एरिया वेयर प्राइम मिनिस्टर कार्नी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल. सो अब एक्सपेक्टेशन ये है कि लार्जली एग्जिस्टिंग ट्रांस माउंटेन कॉरिडोर, ये ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन है, ये उसके पैरेलल ये नई पाइपलाइन जो है चलेगी, और इसे डिजाइन किया गया है 1 मिलियन बैरल ऑयल पर डे उसमें से गुजरेगा. हाउ मच विल इट कॉस्ट? अब गवर्नमेंट ने कोई माफ कीजिएगा, इसमें कोई क्लियर अभी तक कोई कॉस्ट तो नहीं बताई, पर बेस्ड ऑन कंपेरेबल प्रोजेक्ट्स जो दुनिया में बने हैं, एस्टिमेट्स एनालिस्ट्स ये कहते हैं कि 20 to $25 billion डायरेक्ट खर्चा आएगा.

0: We want to hit you hard with hit music. Because when hit music hits, you feel no pain. Keep listening, keep driving with Sean. Welcome back. 94.7 FM पर प्रोग्राम है संगीत बीइंग ब्रॉट टू यू बाय सुर संगम रेडियो. मैं हूं शान. 403-717-1947 स्टूडियोज का नंबर है. कोई तारीफ तनकीद करनी हुई जस्ट अ फोन कॉल अवे आफ्टर द प्रोग्राम ड्यूरिंग द वीक 403-612-6100 इज द नंबर. कल है जुलाई 4. कल ह्यूस्टन में 11 बजे कनाडा का सॉकर टीम का अगला मैच होगा मोरक्को के साथ. और कनाडा की टीम का अब से पहले रिकॉर्ड ये था कि बहुत कम क्वालिफाई करती थी और लाइफ में हिस्ट्री में पहला गोल जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था कतर के अंदर, वहां पर कनेडियन टीम ने मैच तो हार गई थी 4-1 से, लेकिन एक गोल किया था तो कनेडियंस ने उसे एक गोल को ही बहुत सेलिब्रेट किया था. लेकिन चीजें बहुत तेजी से चेंज होती जा रही हैं. यानी नई रिपोर्ट्स के मुताबिक माफ कीजिएगा, अब ये जो मोरक्को से मैच है कल, ये भी बड़ा मैच है. कनाडा ने अब तक 2 मैच जीते हैं, एक बराबर खेला है और अच्छी एक संजीदा टीम आपको नजर आ रही है. अगर कनेडियन टीम ये 16 टॉप 16 का ये जो स्टेज है इस वक्त, 2 मैच कनेडियन टीम और जीत ले तो कनाडा की टीम एक फ्लूक वाली टीम नहीं रहेगी बल्कि एक सीरियस कंटेंडर नजर आएगी दुनिया में. और यही वजह है कि 2022 के वर्ल्ड कप सॉकर से लेकर जो कतर में हुआ था आज तक जो सॉकर फैन बेस है कनाडा के अंदर वो बहुत तेजी से बढ़ी है. कनाडा वैसे भी जो मोस्ट पॉपुलर यूथ स्पोर्ट्स है कनाडा के अंदर वो सॉकर है, वो हॉकी नहीं है. लेकिन अब नया डाटा ये बता रहा है कि इस वक्त कनेडियंस के अंदर जो इस फैन बेस है जो सॉकर को लेके, इस वर्ल्ड कप को लेके, कनाडा होस्ट भी है टीम भी अच्छा खेल रही है, माफी चाहता हूं, टीम भी अच्छा खेल रही है, उसकी वजह से जो फैन बेस है कनाडा में वो इतनी तेजी से बढ़ी है कि हिस्ट्री में कभी किसी स्पोर्ट्स को इतना प्यार नहीं मिला. फॉर एग्जाम्पल बीबीसी की एक नई रिपोर्ट है जिसके मुताबिक इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और चाइना, ये 4 बड़े ग्रुप हैं इमिग्रेंट्स के कनाडा के अंदर. और इन चारों को सॉकर से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है. इंडिया पाकिस्तान हॉकी क्रिकेट के पीछे हैं और फिलीपीन का मुझे आइडिया नहीं है और चाइना जाहिर है कोई एक गेम नहीं है, चाइना के बहुत सारे गेम हैं, सॉकर उसमें इतना पॉपुलर नहीं है. तो ये 4 बड़े इमिग्रेंट्स जो ग्रुप हैं इनके अंदर इस वक्त सबसे बड़ी फैन बेस बड़ी है सॉकर की बिकॉज ऑफ वर्ल्ड कप बीइंग हेल्ड इन कनाडा और टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है. तो अब ये कहा जा रहा है कि जो इस वक्त सॉकर की फैन बेस है कनाडा के अंदर वो इंटरनेशनली जितनी ग्रोथ है उससे कहीं ज्यादा, यानी इंटरनेशनली तो हर साल ग्रो करता ही करता है, विद इन कनाडा वो ग्लोबल फैन बेस से ज्यादा तेजी से बढ़ी है. अब स्टैट्स कनाडा ये कहता है कि अगर ये एक दो और मैच जीत लिए और ये वर्ल्ड कप के बाद कनेडियन हिस्ट्री में शायद सॉकर विल बिकम द मोस्ट पॉपुलर गेम फॉर कनेडियंस अक्रॉस ऑल द एथनिसिटीज एंड अक्रॉस ऑल द प्रोविंसेस अक्रॉस ऑल द एज ग्रुप्स. तो ये बहुत ही एक जबरदस्त चीज होने जा रही है कि सॉकर इतना पॉपुलर हो रहा है. और उससे अब क्या हो रहा है, नई फ्रेंचाइजी बढ़ रहे हैं, नई टीमें ऐड हो रही हैं, बहुत ज्यादा स्पॉन्सरशिप्स आ रही है जिससे पैसा बढ़ेगा तो ये टीम ग्रो करेगी और आने वाले वर्ल्ड कप के अलावा जो टूर्नामेंट्स दुनिया में होते हैं उसमें कनाडा बेटर परफॉर्म करेगा. सो सॉकर इस वक्त चल रहा है, कल का मैच 11 बजे जरूर देखिए, मजा आएगा आपको. राइट नाउ ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होती है.
1: Listeners wanted for hit desi sangeet blended with news and events. Let an entertainment melt in your brain.
2: ओहो, आज फेर नहीं लोड मिलिया.
3: की होया?
2: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है ते बच्चियां नू फेर नहीं मिल होना 2 दिन.
3: ओहो.

0: 哎嗨。
1: Singeet Studio, simply sensational. Inspired by listeners, Singeet Studio. Let your listening pleasure fly. Singeet Studio with Sean. Sean. Let your listening pleasure fly with Sean.
2: Shukriya.
1: Shukriya. Bahut shukriya for tuning in.Welcome back, 94.7 FM, Calgary Eagle Station, program Sangeet, main hoon, Shan, har Friday ko mera aur aapka saath rehta hai isi channel pe, jisko multicultural Fairchild 94.7 FM kehte hain. Aise jab is tarah ki baat aapko lage na ki dhyan nahi hai, kya baat kar raha hai banda, ye host kya keh raha hai, iska matlab hota hai ki studio mein multitasking kar raha hota hai. Aur ye jo live...ब्रॉडकास्टिंग है ना इसका मजा यही है कि आप कई चीजें एक साथ कर रहे होते हैं और वैसे भी अगर हमारी आवाज के पॉज उतार चढ़ाव से आपको ये ना लगे कि तवज्जो 100% आपकी तरफ है कि नहीं है तो फिर ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग नहीं है फिर बहुत ही मोनोटोन सी फील होती है तो यही लाइव ब्रॉडकास्टिंग की खूबसूरती है वरना तो आप गाना आपके पास स्मार्टफोन है उस पर आप सुन सकते हैं कमिंग बैक सिंगर टेलर स्विफ्ट टेलर स्विफ्ट ने हिस्ट्री में बड़े रिकॉर्ड कायम किए हैं पूरी एक टेलर स्विफ्ट जनरेशन है बहुत ही कमाल की जनरेशन है इनके जो शोज होते हैं दुनिया में वो मल्टी मिलियंस होते हैं लिटरली क्लोज टू बिलियन चला जाता है एक शो जो हो रहा होता है इनका दुनिया में तो हिस्ट्री में इतनी बड़ी इतनी पॉपुलर इतनी ज्यादा नेटवर्थ वाली सिंगर बहुत ही कम आई है सो अब क्या हो रहा है टेलर स्विफ्ट अब तक सिंगल थी खूबसूरत है यंग है सक्सेसफुल है तो इंसान सोचता ही ना कि कौन मैच होगा इसका नेशनल फुटबॉल लीग के NFL के फुटबॉल प्लेयर ट्रेविस कैलिस उनके साथ शादी हो रही है अब तक बहुत ज्यादा र्यूमर्स थी पिछले एक हफ्ते से अब फाइनली न्यूयॉर्क की एक इलाके की गलियां बाजार बंद करके पूरी जो स्विफ्ट जनरेशन है पूरी दुनिया में वो मजे कर रही है सेलिब्रेट कर रही है पार्टियां कर रही है और कहा यह जा रहा है कि इस वीकेंड पे यानी कल परसों टेलर स्विफ्ट की शादी NFL फुटबॉल प्लेयर ट्रेविस कैलिस के साथ होने वाली है तो अगर आप टेलर स्विफ्ट को पसंद करते हैं सुनते हैं उनके गाने तो फिर आपको इसका ज्यादा अंदाजा है अगर नहीं है तो कोई बात नहीं जस्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन लेकिन ये शादी जो है हिस्ट्री में महंगी तरीन

0: तुम पहले कभी रुका था और ना आज रुकने वाला है। 94.7 FM पर मेरा और आपका साथ आज हुआ तमाम। I wish all of you love, peace, respect, health and wealth. आपसे मुलाकात होगी अगले फ्राइडे को इसी टाइम इसी चैनल पे, फिर आएंगे घर। खुदा ला।
1: शुक्रिया। आपने संगीत स्टूडियो ट्यून किया, शुक्रिया।
2: द टाइम इज 6 PM। You are listening to Fairchild Radio, CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.